उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की और कहा कि परवरदिगार मुझे अपनी जनाब से औलाद सालेह अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है।

0: फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें और तुमको हकीकतुल हाल तो मालूम हो ही चली है, तो उनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और औरतों को बुलाएं, और तुम अपने बेटों और औरतों को बुलाओ, और हम खुद भी आएं और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक खुदा से दुआ और इल्तजा करें और झूठों पर खुदा की लानत भेजें।
1: इन्ना हादा लहुवल कससुल हक्क।

देखो ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था भी, मगर ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं, और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते।

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6.

0: खुदा की रसूल की।
1: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ यूसीपी की दुनिया FM 92.6।

मौसीकी के सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीनें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आंखों के मसाइल से दोचार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आंखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आंखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आंखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन गजा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज, दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

इस सुर और ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ऑन न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: Listen to me, baby. You know I'm always thinking about you. So why don't you just forget about everything?

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं आपकी मेज़बान तहज़ीन अली आपको प्रोग्राम जावेदा ज़िंदगी में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान अली फ़ानी। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है वो है बदलती दुनिया में वालिदैन को औलाद के हवाले से क्या परेशानियाँ होती हैं, उनकी परवरिश में क्या मसाइल होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किस तरह दुनिया बदल रही है, कितनी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, उसमें क्या मसाइल हैं, कैसे पेरेंट्स को वो टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए और कैसे उनको यूज़ करना चाहिए बच्चों की परवरिश के लिए, इसी पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम अस्सलाम तहज़ीन अली, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
2: मैं ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप बदलती हुई दुनिया को कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले कि कैसे बदल रही है दुनिया?
3: देखें, एक आज से कोई 20-25 साल पहले की दुनिया थी और एक आज की दुनिया जिसमें आज हम जिंदा हैं। एक वो दुनिया थी कि जब रेडियो आपके लिए मुबासरात का एक जरिया था, लोग एक दूसरे को ख़त लिख के कम्युनिकेट करते थे और एक पैगाम जो था वो महीनों के बाद किसी दूसरे शहर में आप पहुंचाते थे। आपको सफ़र करना पड़ता था, टूटे फूटे रास्ते होते थे और लोगों के जो ख्वाहिशात थीं वो बड़ी महदूद होती थीं और उन महदूद ख्वाहिशात के अंदर जिस तरह की ज़िंदगी मुआशी तौर पर इंसानों की होती थी वो इसमें बहुत ज़्यादा खुश होते थे। आप देखते हैं कि एक वो मुआशरा था जिसके अंदर वालिदैन जो हैं वो इंतहाई सख्त थे। वालिदैन जो हैं वो कहते हैं ना कि शेर की नज़र से देखना और सोने के चम्मच में खाना खिलाना, इस थीरी के ऊपर अमल करते थे। वालिदैन जब स्कूल में दाखिल करवाते थे अपने बच्चों को तो उस्ताद को ये कह के आते थे कि बेशक इसकी हड्डियां भी आप तोड़ दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, इस बच्चे को पढ़ना चाहिए। ये वो वालिदैन थे जो कि जिनके अंदर मोहब्बत का एलिमेंट तो जबिली तौर पर था लेकिन वो औलाद के ऊपर जो सख्ती कर रहे होते थे वो भी उस मोहब्बत की एक शक्ल थी जिसको उस ज़माने के लोग मोहब्बत से तरजीह देते थे। एक आज का ज़माना है, आज के ज़माने के अंदर जो उस वक़्त उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक था, जो वालिदैन और औलाद का ताल्लुक था, उन ताल्लुकात के माबैन भी बहुत बड़े तफरीक हो चुकी है। मतलब ज़माना इस तरह से बदला है कि उसने हर तरह के जो ताल्लुकात हों, चाहे वो मियां बीवी के ताल्लुकात हों, बहन भाई के ताल्लुकात हों, उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक हो, वालिदैन का उसकी औलाद के साथ ताल्लुक हो, बॉस का अपने एम्प्लॉय के साथ ताल्लुक हो, हर तरह के ताल्लुकात की डायनामिक्स

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया
1: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि वालिदैन को क्या मसाइल हैं आज के दौर में। सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया भी कि क्या क्या मसाइल हैं। सर आपने बिल्कुल स्टार्ट में एक बात की थी कि इख्तियारात के बारे में, तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में क्या इख्तियारात हैं वालिदैन के पास बच्चों को लेके?
2: देखिए, जैसे मैंने पहले भी बात की कि जब आप वालिदैन बनते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने एक इमरानी मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर लिए हैं, और वो जो इमरानी मुआहदा है ना, वो आपको कुछ इख्तियारात देता है। वो इख्तियारात, सबसे पहला इख्तियार तो खून का इख्तियार है आपके पास, कि आपकी औलाद आपके जिस्म का हिस्सा है और आप इमोशनली भी उसके साथ अटैच्ड हो। उसकी तालीम को लेकर भी आपके पास इख्तियारात है, मुस्तकबिल में वो क्या करेगा उसको भी लेके आपके पास कुछ इख्तियारात हैं। उसकी शादी के हवाले से जो उसके मुआशी फैसला साजी उसने मुस्तकबिल में करनी है उसको लेके भी आपके पास इख्तियारात हैं। देखिए, जो इख्तियारात का होना है ना, कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड अकाउंटेबिलिटी। जितना बड़ा मुझको इख्तियार दिया जाएगा उतनी बड़ी तवक्कुआत मुझसे व्यवस्था हो जाएंगी। अगर तो मैं उस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल सही तरीके से करूँगा तो मैं मुआशरे को जन्नत बना सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे एक पुलिस के पास इख्तियारात हैं कि वो क्राइम को ख़त्म करे और चोरों को पकड़े, लेकिन अगर वही पुलिस वाला चोरों से के साथ मिलकर लोगों के अंदर घरों में डाके डालना शुरू कर देगा, जो कि हम अमूमन अपने मुआशरे में होता हुआ देखते हैं, तो वहाँ पे आपने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। एक जज अपने इख्तियार का जब गलत इस्तेमाल करेगा तो मुआशरे को उसके नतीजे भुगतना पड़ेंगे। एक वकील, एक उस्ताद, जब हर जो भी आप ओहदा है, अगर आप अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करोगे तो रिजल्टेंटली उसके नतायज मुआशरे को भी और आपको भी भुगतना पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब वालिदैन के पास जो इख्तियारात हैं, जब वो इन इख्तियारात को सही या गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो या तो उनका बच्चा जो है वो जन्नत के रास्ते पे होगा जो मुआशरे को भी जन्नत बना देगा, या आपका बच्चा जो है वो जहन्नुम के रास्ते पे होगा और इस मुआशरे को भी जहन्नुम बना देगा। लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वालिदैन को इंतहाई फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत होती है। अमूमन वालिदैन का जो ताल्लुक है आजकल के हमारे दौर के अंदर, जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि पुराने जो ज़माने थे वहाँ पे उनकी रवायतें बड़ी मुख्तलिफ थी। एक डिस्टेंस हमें नज़र आता था वालिदैन और औलाद के दरमियान में। एहतराम के नाम पर बाप और वालिदैन एक दूसरे से मजाक भी नहीं कर सकते थे, और हम खुद इसी मुआशरे की पैदावार हैं और उसी दौर की पैदावार हैं कि कहते हैं कि जब दो अफराद एक दूसरे के पास बैठे हों, एक की उम्र ज़्यादा हो और एक की थोड़ी हो, और वो दोनों एक दूसरे से बात भी ना कर रहे हों, तो समझ लें ये बाप बेटा हैं। ये हमारे दौर की मिसाल है, ठीक है, कि इतना अनफॉर्मल किस्म का रिलेशनशिप कि जैसे दो अजनबी बैठे हुए हैं। बच्चा अपने बाप के साथ हंसी मजाक नहीं कर पा रहा, हंस नहीं रहा, और बाप ने भी अपने चेहरे पर एक आर्टिफिशियल या मसनूई जलालत जो है वो उड़ी हुई है। लेकिन आज के जब हम वालिदैन देखते हैं तो हम देखते हैं कि वालिदैन के दरमियान में और बच्चों के दरमियान में एक रिश्ता है मोहब्बत का। आज मैं बाजू का ये मेरे अबू कहते थे कि आज के बच्चे बाप हैं तुम्हारे, ठीक है, क्या के बच्चे बाप हैं और वालिदैन बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और वैसे भी तरी ने यह कहा था कि जो पहले दो साल होते हैं ना, दो सालों में बच्चा वालिदैन की तरबियत करता है कि व्हाट्स मीन टू बी अ फादर एंड व्हाट्स मीन टू बी अ मदर, कि मदर होने का क्या मतलब है। ये बच्चा माँ को बताता है भाई ये मेरा स्केड्यूल है, इतने बजे मैं सोता हूँ, इतना बजे मैं उठता हूँ, इस तरह से मैं रोऊंगा तो ये होगा, इस तरह से मैं कराऊंगा तो इसका मतलब है मुझे ये हाजत है। तो मतलब बच्चे ने अपने एक्शन से माँ की तरबियत करनी है कि माँ बना कैसे जाता है, बाप की तरबियत करनी है कि बाप बना कैसे जाता है, और दो साल के बाद वालिदैन फिर बच्चे की तरबियत करते हैं। तो ये वाइस वर्सा तरबियत का सिलसिला जारी सारी होता है। तो इस सारे सिनारियों के अंदर हम अपना जो जाविदा जिंदगी का प्रोग्राम है ना, आने वाले हमारे 5-6 प्रोग्राम जो हैं वो उन इख्तियारात के हवाले से होंगे। और पहला जो खून का इख्तियार है वालिदैन के पास बच्चे को लेके, उससे क्या मुराद है, अगले प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे। और वो खून कैसे जोश मारता है और वो खून किस तरीके से वालिदैन के अंदर वो जबिल्लत पैदा करता है जिसको लेके वो पूरी दुनिया से लड़ पड़ते हैं कि भाई ये मेरा बच्चा है लिहाजा ये जो भी करेगा लिहाजा मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, ٹھیک ہے, یہ جبلت اس کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ چوری بھی کر رہا ہے تو آپ اس کی فیور کر رہے ہو, وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو آپ اس کی فیور کر رہے ہو, وہ یونیورسٹی میں یا کلاس میں بنک کر رہا ہے نہیں جا رہا وہاں پہ پھر بھی آپ اس کی فیور کر رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے جو یہ چیز ڈکٹیٹ کر رہی ہے آپ اس خونی رشتے کے اختیار کو مس یوز کر رہے ہو, اور جب اختیار غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کے نتائج والدین کو بھی بھگتنا پڑیں گے اور بچوں کو بھی بھگتنا پڑیں گے.
1: سر آپ نے تو ہمیں بتا دیا کہ اب ہم نیکسٹ کس ٹاپکس پہ بات کریں گے, اور میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں, مجھے امید ہے کہ ہمارے سامعین بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کیا مسائل ہیں والدین کو, اور سر نے ہمیں بتایا کہ آج کے دور میں کیا کیا پرابلمس ہیں اور کیا کیا پرابلمس والدین کو فیس کرنی پڑتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں انہوں نے بتایا کہ اس سے بچوں کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے. اور نیکسٹ پروگرامس میں ہم اسی پر مزید بات کریں گے. مجھے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا. خدا حافظ.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं? जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: अरफा करीम फैसलाबाद के नजदीकी गांव राम दिवाली में 2 फरवरी 1995 में पैदा हूं। आपके वालिद अमजद करीम रंधावा एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। अरफा करीम सिर्फ 3 साल की उम्र में स्कूल जाने लगी। 9 वर्ष की उम्र में 2004 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तहलका मचा दिया।
1: इब्तदाई परवरिश तो माँ ज्यादा बता सकती है क्योंकि राज तो माँ से होता है।
2: अरफा जब हमारे घर में आई तो हम लोग बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने एक रहमत हमारे घर भेज दी है। और जैसे कि माओ के करीब होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, और जो उसकी इब्तदाई परवरिश या उनको बहुत करीब से देखने का मौका सबसे पहले माँ को मिलता है। वो बहुत छोटी सी थी जब से मुझे फील हो गया था कि उसके रिस्पॉन्स बड़े तेज़ हैं, हर काम उसने आम बच्चे की नस्बत जल्दी करना शुरू किया, मसलन बोलना, बैठना, चलना, ये सब कुछ उसने नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा जल्दी किया। और उसकी आँखें, आप अगर उसके बचपन की तस्वीरें देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी आँखें भी बोलती थी। और उस वक्त जब उसको बोलना भी नहीं आता था, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको जवाब दे देती थी कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसको जब स्कूल में दाखिल करवाया बहुत छोटी एज में, दरमियान में उसकी दादी के साथ उसको अल्लाह ने जन्नत नसीब करे कुछ टाइम मिला, जो 2-2.5 साल की एज थी अरफा की जब उसकी दादी अम्मा फौत हो गई थी, उन्होंने बहुत सारा उसको कलमे, दुआए कनूत और आयतुल कुर्सी इस किस्म की चीज़ें सिखाई। अरफा 7 साल की थी जब नात भी पढ़ती थी, कौमी नगमा भी गाती थी। ये मेरे पास उसकी आवाज़ें अभी तक रिकॉर्ड हैं। हर चीज़ में वो नात हो, वो किरत हो, वो मौसीकी हो, वो डिबेटिंग हो, कंपेयरिंग हो, कोई दुनिया की ऐसी फील्ड नहीं थी स्कूल में रहते हुए जिसमें वो नमाया नहीं थी या जिसमें वो पीछे हट गई हो। हर चीज़ में भरपूर माशाल्लाह उसने हमेशा हिस्सा लिया।
0: अरफा ने दुनिया की कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एहसास हासिल किया। इससे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, जिससे दुनिया में ये पैगाम गया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और ना ही पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। अरफा करीम की तरह और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हमें सिर्फ इनको तराशने की जरूरत है। जैसे कहते हैं, मोती तो बहुत होते हैं लेकिन सच्चा मोती हमेशा समुन्द्र की गहराई में मिलता है, और जब हम इसकी गहराई तक पहुंचे तब वो मोती आसमान तक जा पहुंचता है। दूसरी तरफ अरफा करीम ने ये पैगाम दिया कि तालीम में आगे बढ़कर दुनिया के सामने पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाया जा सकता है। अरफा करीम ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर जहन से झिझक को झटकना होगा। अगर आप झिझकते रहेंगे तो फिर हर काम में झिझकेंगे, और अगर आप पुर एतमाद होंगे तो फिर हर काम बाएतमाद होगा। लिहाजा झिझक को कभी अपने जहन पर काबिज ना होने दें। खुदादाद साहितों की मालिक, दुनिया की पहली कम उम्र तरीन आईटी एक्सपर्ट और तमगा हुसन कारकर्दगी की हामिल अरफा करीम रंधावा एक शायरा भी थी। उनकी उस वक्त की 19 अंग्रेजी नज़में इंटरनेट पर मौजूद हैं। इन्होंने 16 साल की उम्र में वो सब हासिल कर लिया जिसे हासिल करने की जुस्तजू में 23 साल लोग तगोदो में लगे रहते हैं। पूरी दुनिया में सिक्का मनवाया और पूरी दुनिया के सामने मुल्क कौम का नाम रोशन किया। अरफा करीम जब बिल गेट्स से मिली तो इनके बारे में कहा गया कि पाकिस्तान का दूसरा रुख अरफा करीम है। अरफा करीम को पाकिस्तान के दूसरे चेहरे का नाम दिया, एक रोशन चेहरे का नाम।
3: ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके,

0: अरफा करीम को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की सनद दी गई। ये ना सिर्फ अरफा के वालदेन के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फखर की बात थी। इसके अलावा दुबई में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन की जानिब से 2 हफ्तों के लिए इन्हें मदऊ किया गया, जहां इन्हें मुख्तलिफ तोहफाजात और एजाजात दिए गए। अरफा करीम ने दुबई के फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में तैयारा उड़ाने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। अरफा करीम को 2005 में इनकी सलाहियतों के एतराफ में सदारती पाकिस्तान यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया। सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल किया, जिसको हासिल करने के लिए उम्र लग जाती है। दुनिया में से 1000 से ज्यादा मंदूबीन में से पाकिस्तान का मस्बत पहलू उजागर करने वाली सिर्फ अरफा करीम थी। अरफा करीम अपनी बीमारी से पहले नासा के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। 22 दिसंबर 2011 को मिर्गी का दौरा पड़ा। इनको फौरी तौर पर CMH अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इनको दिल की तकलीफ भी शुरू हो गई, जिसकी शिद्दत से कोमे में चली गईं। 2 जनवरी को बिल गेट्स ने अरफा के वालदेन से राब्ता किया और इनकी ख्वाहिश का इजहार किया कि अरफा का इलाज अपनी जेर निगरानी अमरीका में करवाना चाहते हैं। बिल गेट्स के ही कहने पर अमरीकी डॉक्टर्स का पैनल बना, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अरफा करीम के इलाज में मुआवनत करते थे। 2012 में 26 दिन कोमे में रहने के बाद 14 जनवरी शब 10 बजे तमाम पाकिस्तान के चैनल्स पर इनकी अफसोसनाक खबर नशर हुई। पूरा पाकिस्तान सदमे से निढाल हो गया। कुछ लोग मर कर भी अमर हो जाते हैं, अरफा उनमें से एक थी। इनको खराज अकीदत पेश करते हुए हुकूमत ने बाद मर्ग लाहौर के एक पार्क और कराची का IT सेंटर अरफा करीम के नाम से मंसूब कर दिया। इसके अलावा इनके गांव को भी अरफा करीम का नाम दे दिया गया। कर्नल अब्दुल करीम, अरफा करीम के वालिद, जिनका काम मुल्क का दफा करना है, जो कि आर्मी ऑफिसर हैं, इन्होंने पाकिस्तान को एक रास्ता दिखाया कि पाकिस्तान का नजरियाती सरहदों पर दफा अरफा करीम जैसी बेटियां हैं, जिनसे दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है।
1: और उसके किस्मत में अल्लाह ताला ने हमेशा ही कामयाबियां डाली। तो वो अपनी किस्मत साथ लेके आई थी, चमकता सितारा थी अपने नाम की तरह। अरफा का मतलब ही होता है कि बुलंद तरीन, सबसे आला, सबसे अरफा। वही मकाम उसको दुनिया में मिला है और दुआ हो कि वही मकाम उसको अल्लाह ताला के हाथ नसीब हो।
0: पाकिस्तान की बेटी पूरी सरारियत के पर्दों में छुपी हुई परी की तरह इस दुनिया से कूच कर गई।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: after short break.
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं बस एक बार, शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को 2000।
1: 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मजार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी, सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढकती। 40 साल तक मजार हैलेलुया से गूंजता रहा, फिर सलीब तो उतर गई लेकिन मजार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मजार इश्क की रोशनी में नहा जाता है, लेकिन ये मंजर तारीख दानों के लिए नहीं, सिर्फ दिल वाले ही इसे देख सकते हैं।
2: ये आवाज है।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
0: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।